एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 29 मई सन 2026। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सादर वंदे।

रेडियो बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया।

0: क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 493.5 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए चिंतन। चिंतन का विषय है मन की शक्ति।

0: प्रत्येक मनुष्य मननशील प्राणी है। मनुष्य का मन निरंतर गतिमान रहता है। संसार की कोई भी भौतिक वस्तु उस गति तक नहीं पहुंच सकती जितनी गति मन की है। मन तेजी से भागता है, इसकी शक्ति दुर्लभ है। मन का संबंध हमारे दिमाग से होता है। मन में जो भी विचार उठते हैं, हमारा शरीर उसी के अनुरूप ढल जाता है। जब मन में खुशी या आशा का संचार होता है, तो हम खुशी प्राप्त होने वाले कार्यों को करने में व्यस्त हो जाते हैं। सकारात्मक विचारों से भरकर प्रगति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जबकि निराशा और अवसाद से भरे विचार हमारे शरीर को कमजोर बना डालते हैं। वास्तविकता ये है कि मनुष्य की हार और जीत सब कुछ उसके मनोयोग पर निर्भर करती है। इतनी प्रचंड शक्ति है हमारे मन की। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन की शक्ति को परमात्मा के ध्यान में लगाने का निरंतर प्रयास करता है, उसे संसार में भटकने नहीं देता है, वही दिव्य और सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त कर लेता है, जिसके श्री चरणों में आनंद ही आनंद है। इसीलिए मन को योग के द्वारा परमात्मा में एकाग्रचित करना ही हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए। जो व्यक्ति मन की दिव्य शक्ति को जान लेता है, वो अपने जीवन काल में दुख, पीड़ा और संताप के कांटों के बीच भी अपने लिए मार्ग निकाल ही लेता है, क्योंकि उसे वास्तविकता के धरातल पर जीना आ जाता है। वो मनुष्य प्रेम पूर्वक सद्भावना से परिपूरित होकर सहनशील, विनम्र और संवेदनशील बन जाता है। आइए आज के दिन का आरंभ अपने मन की शक्ति को पहचान कर परमात्मा की शरण में पूर्ण समर्पण भाव से प्रयास करते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, जिसका विषय था मन की शक्ति। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम में अब पहला भजन सुनिए, अंजू ताली के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंदना कार्यक्रम, जिसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। सवेरे के 6:30 हुए हैं।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:30 और वक्त हो चला है श्री रामचरित मानस गान का।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान पूजा भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखाने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।

भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। छह बजकर 50 मिनट पर प्रसारित होगा आदिवासी लोक संगीत। कलाकार हैं हितेंद्र आचार्य और साथी।

वातायन का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 7:20 पर। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे डॉक्टर सरवत खान से कलाम ए शायर।

दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 8:15 पर। आज का हमारा विषय है रिश्ते। प्रातः 9:30 पर आप सुन सकते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित

केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10:00। शाम 5:05 पर प्रसारित होगा महिलाओं का अपना कार्यक्रम नारी लोक।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:00। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर।

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती में बात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने बोने ने वीना बहनों घनो घनो राम राम राम राम। हवा ना टाइम में आपड़े जी खेतर नो काम काज ई करो पड़ी रो है। आपड़े तो हाँ किसान भाई जी काम करवो है टेमने अनुसार ज करवो है। आने वाले तो तैयारी करी दीदी है पण आपड़े ने हवे टेमने अनुसार हंगरू काम खेतर नो निपटाव लेवो है। जे भी खेतर नो रारा डंठल साफ सफाई करवो पड़े ई तैयार करीने मिनी सांडवो है। मैं किसान भाई में तो आज कपास नी बुवाई ही करी दीदी है, उगी भी गया है ने अवे पासी देरी नहीं है। आपे तो कपास नी बुवाई भी थेगी ने जिम अवे टेम आवी रह्यो थको है आपड़े खरीफ नी बुवाई करवानो। आपड़े अनुसार आपड़ो हांगरो पूरो खातर बीज करेने कम्प्लीट करेने राखांगा तो पछी आपड़े टीमने जाने वाले तो देखो आने तैयारी करी दीदी है। पानी आवी रह्यो थको है अवे दाड़े दाड़े करीने हांगरी वातोनु ध्यान राखवू है। हांगरो खाद बीज जी भी उन्नत किस्म ना बीज है मक्का नो है थुवर नो है ने आपड़े कई बुवाई करवी है ई समय ने अनुसार पूरो लावी ने तैयार राखवू है। बीजू आ कम्प्लीट हल वगैरह भी तैयार राखवा है। घणी वक्त एवं थाय कि आपड़े हल वगैरह कम्प्लीट न राखा चढ़ी वगैरह लावी ने राखा बीज ने लावी ने राखा जे वक्त आपड़े पेरवा नो टाइम थाय वक्त आपड़े दौड़े ने दुकान माते जा तो तई वक्त पसे दुकान माते जा लावा ने मेना देरी थी जाए। एटले हरू आपड़े ने अभी थे कि जी खातर बीज हल नो औजार है रस्सी वगैरह सड़ी वगैरह है हांगरू लावे ने कम्प्लीट राखू है ताकि हवे वधार अच्छो पानी पड़ी गयो ने पेरवा नो टाइम आवी गयो एने वक्त आपड़े पेरवास लागे जा। किसान भाई ध्यान राखवू है केम के किसान भाई हर वात तरीके थे कि भाई जानकार है जागरूक है देरी राखी दे तो पसे भूल थी जाए। एटले हरू किसान भाई आपणे ध्यान राखवू है। ने बीजो आ मूंग वगैरह है थई गया है ने एनो हकेलो भी करी दीदो है झटू झट करीने जी भी मूंग कीधा थका है हवे खेतर ई भी खाली थई गया है तो एने भी आके अकावे ने तैयार राखे ताकि ई भी खेतर है तैयार थई जाए। किसान भाई एक अने वात नो ध्यान राखवू है कि खेतर में आपणे साफ सफाई करवा ज एने वखत ध्यान राखवू केम के घणी वखत आपणे आवे दाड़े आ अखबारा में पत्रिका में सोरभ भणे के भाई देखो आ खेतर साफ सफाई करी रहते कही तो भाई ने दौर में थकी या पसे कोई किसान भाई नहीं है जहरीलो जानवर काटवा थे कि आ मौत थी गई दुर्घटना थी गई एवं घनी वक्त आपने होणवा में आवे तो आपने जी भी क्षेत्र में कामकाज करे एने वक्त विशेष करीने ध्यान राखू है। अगर एमने तेमनु हेड़ा पारी आपने साफ सफाई करे जे झाड़ी हो वहां करी भाई वधारी कूसो बीजो तुजो नाखी ने एने आग लगाड़ देवी है सोमी देव ताकि जी भी तेमनु जानवर हो ए नहीं जाए। अहीं वातनुं विशेष करीने ध्यान राखवू है। अगर एवं आपणे खेतर में साफ सफाई करी रह्या खेतर में पानी पीवा पावी रहे कही ने एवं कि काटो गद्दी हो या पछी जहरीलो जानवर वगैरह आपणे कल्यू एवं खबर लागी जाए तो तुरंत देरी नहीं करी ने डॉक्टर नो इलाज भी लेवो जरूरी है। किसान भाई देखो आपणे तैयारी भी करी पड़ी रही है एमने तेमनो खेतर में भी जावू पड़ी रू है खेतर में साफ सफाई करी पड़ी रही है ने खेतीवाड़ी ने हाथी हाथी पासू आपणे ते घर परिवार लेने बैठो थक है। भाईओ ने किसान बहन ने घर में आ एमने तेनो बारो होरो ने बीजू आ गाय भेस ने अदला बदली करू पड़ी रू है ने दूध काढ़व पड़ी रू है बीजू पास घर नो काम निपटवा एमने तेनो परिवार नो बीजो सोरो नो आंगड़ो आपणे ने करवू पड़े तो अभी तो आपणे सूटअप पड़े ने काले हवारे अणाश टाइम माते हांगरी किसान भाई बहन थी कि आपणे फेरी मळवू थायगा। राम राम राम राम।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती में बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों ने सुना खेतीबाड़ी से संबंधित सामान्य जानकारी। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रही हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं और वक्त हो चला है आदिवासी लोक संगीत का। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना एफएम माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन एआईआर बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन एआईआर। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन एआईआर। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत हितेंद्र आचार्य और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

0: के साथ ही आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे डॉक्टर सरवत खान से कलाम ए शायर।
1: चंद अशआर पेश खिदमत है कि देखिए आओ खुद बनाएं हम अपनी आप तकदीरें, आओ खुद बनाएं हम अपनी आप तकदीरें, ये जमी जमी अपना दौरे आसमां अपना, ये जमी जमी अपनी दौरे आसमां अपना। और देखिए एक शेर के साकी तेरी आंखों में वो सब कुछ सही, लेकिन साकी तेरी आंखों में वो सब कुछ सही, लेकिन लब तक जो ना पहुंचे उसे सागर नहीं कहते। ए साकी तेरी आंखों में वो सब कुछ सही, लेकिन लब तक जो ना पहुंचे उसे सागर नहीं कहते। और ये गजल के चंद अशआर देखिए कि रात ढलती रही दौर चलते रहे, रात ढलती रही दौर चलते रहे, शम्मा जलती रही दिल पिघलते रहे, शम्मा जलती रही। इस कड़ी धूप में इस तपी रेत में, इस कड़ी धूप में इस तपी रेत में पा बजूना हुए फिर भी चलते रहे, पा बजूना हुए फिर भी चलते रहे। हुस्न और इश्क की बस मुलाकात थी, हुस्न और इश्क की बस मुलाकात थी, बात इतनी सी थी लोग जलते रहे, बात इतनी सी थी लोग जलते रहे। और आज इस्मत को अपनी बचाओ सहर, आज इस्मत को अपनी बचाओ सहर, नन की इज्जत लुटी लोग तकते रहे, नन की इज्जत लुटी लोग तकते रहे। एक गजल सुनाऊंगी, उससे पहले चंद अशआर सुनिए कि मोहब्बत की दौलत दिलों की है राहत, मोहब्बत की दौलत दिलों की है राहत, जो इसको रखेगा जमाना उसी का, जो इसको रखेगा जमाना उसी का। और आएगा वो दिन भी कि कदम चूमेगी मंजिल, आएगा वो दिन भी कि कदम चूमेगी मंजिल, निकलेगी ये हसरत भी अगर दिल में लगन है, निकलेगी ये हसरत भी अगर दिल में लगन है। और देखिए एक गजल के चंद अशआर आपको सुनाए जो दौरे हाजिरा में जिस तरह के हमारी जिंदगी कट रही है, हालात हैं पूरी दुनिया के, उस पर जरा नजर रखते हुए कि न दर है कोई ना आस्था है, न दर है कोई ना आस्था है, अजब हमारी ये दास्ता है, न दर है कोई ना आस्था है, अजब हमारी ये दास्ता है। अवाम तो है गजब की गुमसुम रगों का मौसम गया कहाँ है, अवाम तो है गजब की गुमसुम रगों का मौसम कहाँ गया कहाँ है। और इंसान देखिए कैसा हो गया है कि वफा नहीं है जफा भी गायब, वफा नहीं है जफा भी गायब, इंसान आखिर रहा कहाँ है, वफा नहीं है जफा भी गायब, इंसान आखिर रहा कहाँ है। जबान पे ताले नजर खला में ये बुत हैं कैसे अजब समा है, ये बुत हैं कैसे अजब समा है। और एक गजल के चंद अशआर देखिए कि दीजे तसल्लियां न मुझे सर बसर गलत, दीजे तसल्लियां न मुझे सबके सामने सर बसर गलत, सो बार हो चुका है फरेबे नजर गलत, सो बार हो चुका है फरेबे नजर गलत। और शेर देखिए कि दिल में उतर गया था, दिल में उतर गया था मेरे ये सहर गलत। एक गजल के चंद अशआर पेश खिदमत है कि था फलक बोस हर मकान जिनका, था फलक बोस हर मकान जिनका, सर छुपाने को साहिबान रहा, सर छुपाने को साहिबान रहा। और तेरे दर पर झुकी है जब से जबी, तेरे दर पर झुकी है जब से जबी, आस्था फिर कोई आस्था न रहा, आस्था फिर कोई आस्था न रहा। और शेर देखिए कि अभी चमन में बहार तो है, अभी चमन में बहार तो है, न रहा अपना आशिया, न रहा, ना रहा अपना।

0: रखा और एक शेर देखिए कि अब तो अंजाम पर है अपनी नजर, बिल्कुल जिंदगी का आखिरी मरहल है, आखिरी दिन, अब तो अंजाम पर है अपनी नजर, बाकी अब कोई इम्तिहान न रहा, बाकी अब कोई इम्तिहान न रहा। और देखिए कि हवाएं लगती हैं अब तो सर फिरी ही अच्छी, हवाएं लगती हैं अब तो सर फिरी ही अच्छी, देखिए मैं सोचते सोचते कहां से कहां आ गई, देखिए मैं सोचते सोचते कहां से कहां आ गई। और देखिए कि इल्म तो बहुत था मेरे पास, लेकिन इल्म तो बहुत था मेरे पास, लेकिन डिग्री खरीद कर वो मुझसे आगे बढ़ गया, डिग्री खरीद कर वो मुझसे आगे बढ़ गया। और ये देखिए कि हर तरफ फिक्र फन की यलगार है, हर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, हर तरफ फिक्र फन की यलगार है, कारी तखलीक से मगर बेजार है, पढ़ने वाला बेजार है। तो ये क्या बात है, ये देखिए अब कि इधर शहरे खामोशा में शोर बरपा है, कब्रिस्तान, इधर शहरे खामोशा में शोर बरपा है, उधर दुनिया किस कदर सुनी सुनी लगती है, उधर दुनिया किस कदर सुनी सुनी लगती है। और देखिए कि इधर मेरे ख्याल यार का कोई तसव्वुर ही नहीं, हम अपने चाहने वाले जिसको इबादत करते हैं पूजा करते हैं उसकी तरफ हमारा ख्याल जाता ही नहीं, इधर मेरे ख्याल यार का कोई तसव्वुर ही नहीं, उधर फकीरी कलंदरी में भी गुनगुनाती है, उधर फकीरी कलंदरी में भी गुनगुनाती है। और नींव की ईंट में टपका मेहनत का पसीना, नींव की ईंट में टपका मेहनत का पसीना, ऐसी के सुकून से दिखाई कब देता है, ऐसी के सुकून से दिखाई कब देता है। और देखिए शेर कि चमन में हर तरफ कल तक जो थे आंसूदए राहत, चमन में कल तल हर तरफ कल तक जो थे आंसूदए राहत, परेशान आज वो अहले चमन है आशियाने में, आएगा वो दिन भी के कदम चूमेगी मंजिल, निकलेगी ये हसरत भी अगर दिल में लगन है। और ये देखिए कि जिंदगी आह बन के रह जाएगी, जिंदगी आह बन के रह जाएगी, ऐसे टूटेगा शीशा दिल कभी सोचा न था, जिंदगी आह बन के रह जाएगी, ऐसे टूटेगा शीशा दिल कभी सोचा न था। और शगुफ्ता दिल खूंच का हो जाएगा, शगुफ्ता दिल खूंच का हो जाएगा, तबस्सुम मुंह लहू होगा कभी सोचा न था, तबस्सुम मुंह लहू होगा कभी सोचा न था। और गर्दिशे दहशत का ये तारीख फजा, गर्दिशे दहशत की ये तारीख फजा, शकिस्त रेख्त का ये फरेब कभी सोचा न था, शकिस्त रेख्त का ये फरेब कभी सोचा न था। और देखिए कि मुंह फेर के यूं पास से गुजरा तो न कीजे, मुंह फेर के यूं पास से गुजरा तो न कीजे, नजरों से सरे राह गिराया तो न कीजे, दुश्मन को हमा वक्त सराहा तो न कीजे, बातों में जहर इतना मिलाया तो न कीजे, मरहून गमे इश्क हूं ये जुर्म है मेरा, मरहून गमे इश्क हूं ये जुर्म है मेरा, अब मेरी मोहब्बत का तमाशा तो न कीजे, इनकार ही अगर करना है तो पहलू है कई और, इनकार ही अगर करना है तो पहलू है कई और, इस तरह मगर खून में तमन्ना तो न कीजिए। और देखिए कि सौदाई बनाकर मुझे रखना है तो रखिए, सौदाई बनाकर मुझे रखना है तो रखिए, हाँ कूचो बाजार में रुसवा तो न कीजिए, हाँ कूचो बाजार में रुसवा तो न कीजिए। ओ माइल बाजफा आप शहर पर हूं अगर हूं, माइल बाजफा आप शहर पर हूं अगर हूं, उम्मीद के खाके को मिटाया तो न कीजिए, उम्मीद के खाके को मिटाया तो न कीजिए।
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत डॉक्टर सरवत खान से कलाम ए शायर, ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है।

101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 7:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती की कार्यक्रम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातों बातों में इस फिल्म के गाने के साथ, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, योगेश के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना, योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की

0: खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

सखी रॉबिन फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, योगेश के बोल रॉबिन बैनर्जी का संगीत। इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

हम है राही प्यार के कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मेरे भैया फिल्म से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर।
1: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान

0: किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देबराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स

0: से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटन्स पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धारमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, जिन्हें हम शब्दों में पिरोकर आपके दिलों तक पहुंचाते हैं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बिन बोले समझ में आ जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं।

तो आज की सुहानी सुबह को प्यारी बातों, मीठी मुस्कुराहटों और सुरों की नरम छाव में सजा लेते हैं। आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट मीनाक्षी उपाध्याय, जहां बातें नहीं एहसास जुड़ते हैं। जी हां श्रोताओं, रिश्ता एक ऐसा शब्द जिसमें अपनापन भी है, विश्वास भी है और भावनाओं की अनगिनत परतें भी। माँ की ममता, पिता का संरक्षण, भाई बहन की नोकझोंक, दोस्तों की हंसी और जीवन साथी का साथ, ये सभी रिश्तों के रंग हैं जो जीवन को इंद्रधनुष सा सुंदर बना देते हैं। रिश्ते केवल शब्दों का बंधन नहीं, ये तो आत्मा के आंगन में खिले मधुबन है। कभी माँ की ममता बनकर बरसते हैं तो कभी जीवन साथी का साथ बनकर जीवन के पथ पर चलते हैं।

श्रोताओं, हमारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, भावनाओं की सरिता है। इस सरिता को दिशा और मधुरता देने का कार्य करते हैं रिश्ते। जीवन के उस अदृश्य धागे की भांति है जो हृदय को स्नेह के बंधन ने बांधते हैं। यदि जीवन को एक विशाल वृक्ष माना जाए तो रिश्ते उसकी जड़ें हैं जिनसे संवेदनाओं का रस प्रवाहित होता है। रिश्ते यदि प्रेम और विश्वास से सवारे जाए तो बिखरे हुए जीवन भी फिर से निखर जाते हैं। ये वो धरोहर है जो धन से नहीं मिलती, हर हृदय की धड़कन में चुपके से खिलती है।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: रिश्ते जीना नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। श्रोताओं, रिश्ते केवल रक्त की धमनियों में बहते संवेग नहीं, ये आत्मा के वे मुख निमंत्रण है जो एक एकाकी जीवन को सार्थकता और पूर्णता प्रदान करते हैं। वक्त की आंधियां चाहे कितनी भी गुजर जाए, सच्चे रिश्ते कभी अपना मार्ग नहीं भुलाते। वे बरगद की छांव बनकर हर दुख हर लेते हैं और सूने जीवन में फिर से रंग भर देते हैं।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, रिश्ते उस सतरंगी कैनवास की तरह है जिस पर हम अपने सुख दुख, प्रेम विरह, आशा निराशा के विविध रंग बिखेरते हैं। श्रोताओं, अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो है जिसे दिल से अपनाया जाता है। श्रोताओं, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से हो।

श्रोताओं, रिश्ते रक्त के हो, दोस्ती के हो या मोहब्बत के हो, ये मांगते हैं सिर्फ तीन चीजें, वक्त, तवज्जो और थोड़ी सी समझदारी। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है ना श्रोताओं, लेकिन उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। तो संबंध भी कुछ इस तरह होते हैं, बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पर लिखा कैसे जाए? जिस तरह एक पत्थर जल की सतह से होते हुए जल में समा जाता है, ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को भी निभाना है।

श्रोताओं, रिश्तों की गर्माहट ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, तो अपनों के लिए समय जरूर निकालिए। रिश्तों की मधुरता ही जीवन को सुंदर सार्थक बनाती है। इसी के साथ मीनाक्षी को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक और नई थीम के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 8:45 और वक्त हो चला है राजस्थानी लोक संगीत का।

0: सीमा मिश्रा और साथी कलाकारों के गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से

0: वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांवों तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झाबर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
3: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोल पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी

0: वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
1: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुंचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
2: धूप के पार सितारों का नहीं लगता है, उस पहाड़ी पे ये चांद का घर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई ये कायत है, जो रघु आंखें हैं पड़ते हुए घर लगता है।
1: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत अभिजीत भट्टाचार्य के गाए गैर फिल्मी गीत।

अभिजीत भट्टाचार्य के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 प्रस्तुत है एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
0: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
0: ठाणे महाराष्ट्र से

0: शोभा राणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते।

0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को।

0: मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर NCC का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: hmm.

0: मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
1: धन्यवाद श्रीमान।
0: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
1: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
0: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
1: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
0: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य

अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर

0: दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली!
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नू।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप

0: सुनते हैं जी, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
1: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा दो में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
0: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगी हुई है, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
1: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
0: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, धाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
1: तो हमारे पक्के लिसनर हैं आप।
0: यही जान लीजिए कि हम इस समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6-7 जब से हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
0: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
1: काम कहाँ करते हैं?
0: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
1: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जो जीवन में एक पल भी रोना ना।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी।
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देखकर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार दादी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसाय गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ,
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ, तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को भी ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है यहाँ भी, मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लू बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के, मतलब ये जो अपना भारतवर्ष है ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी सुन रहे हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी।
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार?
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में
0: भाई, मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान, बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ, दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और पीसते हैं पुतली।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी, जी।
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं, 10 बजे शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे

0: क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पोप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?

0: भारती सुनने से हमें जानकारियां मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली। अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए, इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुनकर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
1: अपने
0: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
0: जी
1: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
1: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को आज।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। आप बताइए क्या करते हैं
1: मैडम? हमारे खेती

0: किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
1: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
0: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: चलिए अच्छी बात है।
0: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के मनबाद का कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
1: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
0: मैडम ने अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
1: क्यों?
0: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
1: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
0: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
1: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
0: जी जी मैडम,
1: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
0: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
1: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला खासागाम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।

0: वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे, बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे, क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कम्प्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी। ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर के फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-2466-2867-0288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 02240024662 साथ ही 02228670288 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: ये है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए प्रोग्राम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आज के इस प्रोग्राम रंग तरंग का पहला गीत।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे चुनिंदा कलाकारों की गायी चुनिंदा गजलें। शुरुआती गजल हम सुन रहे हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 11:30 लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआती नगमा आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वर में। आनंद बख्शी के बोल हैं सचिन देव बर्मन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम सुन रहे हैं असली नकली फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और रफी साहब के युगल स्वर में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, मजरू सुल्तानपुरी की लिखी इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

हम सुन रहे हैं धनवान फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार है हृदयनाथ मंगेशकर।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: अगला गीत हमने लिया है महबूबा फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश आपको सुनवा रही है सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल हैं शिव हरि का संगीत।

सिलसिला फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष

0: पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी।
1: रूठा यार मना मित्रा,
0: यार को यार बना मित्रा,
1: न खुद से रहो।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
4: उनके जुल्फे उनके

किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता है जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं और संगीत अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है, प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं, ये जुल्फ ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ है या जो हमारी जिंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीजों का शुक्रिया करें जिंदगी में, हर रोज हर सुबह सबसे पहली चीज। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीजों का और गिनते हैं कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवार है और बहुत सारी शब्द जो इनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ निगाह काजल कजरा महक बिंदिया पायल चांदनी वादा इशारा ख्याल धड़कन दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत जरूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहां पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना, मीना

बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज की जरूरत हो चाहे 100 चीजों की जरूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाजारों का जो चलन है या बाजारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाजार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतजार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था। जयदेव का संगीत था और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तेफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूं, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाजारों की तो दिल्ली का लाल किला मीना बाजार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज पालिका बाजार घूमे हैं और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मजा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हां, और यहां आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहां साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है। और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहां पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहां जहां वो रहते हैं, जहां घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहां भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है। और

लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहां पहुंचने के लिए भी कैसे पहुंचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहां पर, जहां पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूं तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहां भी घूमा हूं, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्छक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकुला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंचकर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहां पर क्या क्या मिलता है, यहां पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीजों को हाथों से चुनना, परखना और चीजों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीजें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, और नई चीजों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहां जाकर जरूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहां गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहां के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहां पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और जरूर आप पढ़ें और जरूर यहां पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाजार अजमेर के डिग्गी बाजार, नाला बाजार, दरगाह बाजार, नया बाजार और भिलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाजार है सांगानेर बाजार, पवन बाजार, आजाद बाजार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहां पर भी मैं घूमी जरूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियां मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहां पर जाकर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुंच रहे। चलिए

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया। हमारे श्रोता लिखे कि बहुत पहले यहां पर आए थे और घूमे थे लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक्स यहां पर मिलते हैं और काफी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहां छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूं, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूं मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई

0: गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज का दुख हो रहा है। लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फेहरिस्त में ये अगला गीत।
1: जुल्फ की

जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में मजनू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

आज पूरे 1,000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे, लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह

होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे

0: महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
1: सात अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
0: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
1: 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वागबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश

0: के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार हिन्दी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर

0: विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर-18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के

0: इतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: झनक झनक पायल बाजे इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक की कटिंग करते हैं, फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगरों बनाते हैं माल।
0: अच्छा।
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना, वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा भूपे, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपके
1: मैं मेरे पति का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े से मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन नरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ, बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता। स्पर्श करने के बाद ही
0: सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना

0: अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तो यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही हूँ। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है ना
1: मसूरी मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का बोल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रातू छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो वो सब फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से।
0: हुँ?
1: तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है,
0: अच्छा,
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी,
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत
1: जी,
0: कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब
1: हाँ।
0: हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि उसे मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: माँ

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी
0: था।
1: जी जी मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
1: जी जी
0: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाल दीवाना,
0: रफी साहब का गाया हुआ।
1: जी जी जी
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240022 6702 88 नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228702888। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने, और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक न दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा ये सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में

दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई? जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाती।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

0: पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें

सुन सकते हैं बातचीत गर्मी में तन की शीतलता बनाए रखे थे डॉक्टर नीरज पंडा से। साथ ही आप सुनेंगे गीत 5:30 पर अभिजीत आरती के कार्यक्रम आकाशवाणी के लंबी केंद्र से आप सुनेंगे। 7 बजे का समय रहेगा चौपाल का, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा बातचीत लोक भजन और बाजार भाव। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र

पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। थोड़ी देर में 5:05 पर आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर दिवस पर चर्चा, साथ ही सुनेंगे भोलेपन को भूलता बचत

हर रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और रात 10 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। ये तो था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब एक नजर हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों

कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से चिंतन, यहीं से 6:10 पर आप सुनेंगे वंदना। रामचरित मानस कान का समय रहेगा 6:30 पर हमारे स्टूडियो से, और खेती की बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का मजा आप ले सकते हैं 6:50 पर। 7:20 का समय रहेगा वातायन का। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और दोपहर 12 से शाम 5 तक हमारे मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो से सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कुछ दिल से। राजस्थानी लोक संगीत का मजा आप ले सकते हैं 8:45 पर। 9:10 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे। 11:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत और 11:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे कल शाम 5:30 पर और रात 9:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे कल शाम 6:30 से हमारे जयपुर केंद्र से। 7:00 का समय रहेगा किसान वाणी का। इसके अंतर्गत ग्रामीण श्रोता सुनेंगे चर्चा, बातचीत, लोक भजन और बाजार भाव।

जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से आप सुनेंगे कल रात 7:30 पर 8:45 पर समाचार संध्या आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से आप सुनेंगे कल रात 9 बजे और 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से। ये तो था कार्यक्रम विवरण।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का मनी चैनल है। 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम मैडलॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूँ पुष्पा सैनी, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोनों जीवन के भागदौड़ में कभी हम शांति की तलाश करते हैं तो कभी बचपन की मासूमियत हमें पुकारती है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की और साथ ही बचपन की जो धीरे धीरे अपने भूलेपन से दूर होता जा रहा है। इसके अलावा गर्मी के इस मौसम में तन और मन को शांति रखने के लिए कुछ उपाय भी आपके लिए लेकर आए हम और बातचीत करेंगे हम डॉक्टर नीरज पांडा से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। दोनों जब दुनिया के किसी कोने में संघर्ष, हिंसा और अशांति बढ़ती है तब कुछ लोग अपने परिवार से दूर रहकर मानवता और शांति की रक्षा का दायित्व निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक ऐसे ही साहसी पहरे हैं जो अनेक देशों में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। आज का दिन उन वीर सैनिकों के सम्मान का दिन है जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपना योगदान दिया था। देखिए दोनों, एक महिला सबसे पहले अपने घर से प्रेम, धैर्य और शांति का वातावरण बनाती है। इसी प्रकार शांति सैनिक भी दुनिया को सुरक्षित और शांत बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह दिवस केवल सैनिकों का नहीं है बल्कि मानवता का और संवेदनाओं का दिवस भी होता है। दोनों, विश्व में शांति तभी संभव है जब परिवारों में प्रेम है, समाज में सहनशीलता है और मन में करुणा हो। तो आइए हम भी अपने घर और समाज में शांति, सहयोग और अपनत्व का दीप जलाएं। तो बहनों, ये तो हम बातचीत कर रहे थे आपसे विश्व शांति दिवस के बारे में और अब बात आपको सुनाते हैं, गीत संगीत की दुनिया में ले चलते हैं और संदेश के साथ साथ एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: किराया कौन दे रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: RBI कहता है
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, थकान, लू और शरीर में पानी की कमी जैसी कई समस्याएं लेकर आता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने तन और मन दोनों को शीतल रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नीरज पंड्या जी। नमस्ते नीरज जी।
3: नमस्ते पुष्पा जी।
2: नीरज जी, आपका स्वागत है हमारे नारी लोग कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: जी नीरज जी, सबसे पहले हमारी बहनों को बताइए कि गर्मी का मौसम हमारे शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालता है।
3: देखिए, अत्यधिक गर्मी शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी कर देती है। इससे शरीर में थकान होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द, कमजोरी, अधिक पसीना आना, त्वचा संबंधित समस्याएं और कभी कभी हीट स्ट्रोक, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं लू लगना, ऐसी गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, मतलब शरीर में जब डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, तो विशेषकर सोडियम और पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है
2: जी।
3: और इससे ब्लड का एक पार्ट है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा या रक्त प्लाज्मा कहते हैं, उसका वॉल्यूम घट जाता है और इससे रक्त भी गाढ़ा होने लगता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में जल की कमी से उनके काम प्रभावित होते हैं। तो इससे क्या होगा, शरीर का तापमान नियंत्रण बिगड़ जाएगा, रक्तचाप कम होने लगेगा और हृदय गति भी तेज हो सकती है, मस्तिष्क, किडनी और मांसपेशियों की कार्यक्षमता घटती है और ये बड़ी घातक स्थिति हो जाती है
2: जी।
3: और आयुर्वेद में भी कहा है कि गर्मी के मौसम में पित्त दोष बढ़ जाता है, जिससे शरीर में जलन, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और बेचैनी बढ़ जाती है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि शरीर का तापमान संतुलित रखना और पर्याप्त पानी पीना इन दिनों में बेहद जरूरी है, वरना ये सारे लक्षण शरीर को प्रभावित करेंगे।
2: नीरज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारी बहनों को बताई है। हम जानना चाहते हैं कि गर्मी में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है।
3: सबसे महत्वपूर्ण है, हमें बहुत पानी पीना चाहिए, यानी बिना प्यास के भी हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे। इसके अलावा छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी और सादा घर का बना जो शरबत होता है वो भी इन दिनों में बहुत ही फायदेमंद रहता है। आयुर्वेद में बेल, सौंफ, धनिया और गुलकंद जैसे पदार्थ शरीर को शीतल रखने वाले माने गए हैं, इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। साथ ही तेज धूप में निकलते समय सिर ढकना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनना चाहिए और दोपहर की जो तेज धूप है उस समय बचना चाहिए
2: जी। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से पेय पदार्थ हैं जिन्हें गर्मी में नियमित रूप से हमारे सभी श्रोताओं को लेना चाहिए।
3: पुष्पा जी, गर्मी में पानी से भरपूर फल और हल्का भोजन सबसे अच्छा रहता है। जैसे मैं कहूँ, इन दिनों में ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, आम पन्ना, दही, छाछ और हरी सब्जियां, इनको हम उपयोग कर सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार मौसमी और ताजा भोजन है, यानी शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि पर्याप्त न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर भोजन हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएगा।
2: डॉक्टर साहब, आपने हमें बता दिया कि है ना, हमें चाश भी, बेल का शरबत भी पीना चाहिए, आम का पन्ना भी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। वास्तव में हमारे शरीर के लिए लाभकारी है सब चीजें
3: जी। बिल्कुल,

0: आम पाना शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा और हमें सनस्ट्रोक यानी लू लगने से बचाएगा। बेल का शरबत पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में पाचन प्रणाली भी हमारी थोड़ी कमजोर रहती है
1: जी।
0: और ये शरीर को ठंडक भी पहुंचाएगा। नींबू का पानी भी हम पी सकते हैं। नींबू का पानी है वो विटामिन सी का अच्छा एक स्रोत मानते हैं और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, और खास करके ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को दूर करने वाला होता है, यानी ये बैलेंस करता है। पर खास ये हमें ध्यान देना है कि नींबू के पानी के अंदर में शक्कर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये कह सकते हैं हम कुल मिलाकर कि घर पर बने सभी पेय सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, इसलिए हमें घर के बने पेय ही उपयोग में लेने चाहिए।
1: बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी नीरज जी। और नीरज जी, गर्मी में खान पान कैसा होना चाहिए और हमें किन चीजों को खाने से बचना चाहिए?
0: देखो पुष्पा जी, गर्मी में हल्का सुपाच्य और ताजा भोजन हमें लेना चाहिए। बहुत ही ज्यादा तला भुना मसालेदार और बाहर का पानी बासी भोजन ये हमें कम करना चाहिए। आयुर्वेद में भी जैसा कि बताया है कि गर्मियों में अधिक मिर्च मसाला पित्त को बढ़ाता है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, और मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी हम समझ सकते हैं कि जंक फूड और ज्यादा ऑयली चीजें यानी तेल वाली चीजें ये इन दिनों में पाचन को खराब करती हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए।
1: जी नीरज जी, जो महिलाएं घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभाती है, उन्हें गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, महिलाओं को समय समय पर भोजन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो घर का और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं। पर्याप्त पानी उनको पीना चाहिए, पर्याप्त नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और खास भूखे पेट लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट रहने से और पानी की कमी से सनस्ट्रोक होता है, लू लगने की पूरी पूरी संभावना रहती है। यदि बाहर काम करने के लिए जाना ही है तो अपने शरीर का ध्यान रखें, धूप से बचाव करें, छाता और दुपट्टे का उपयोग कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में मानसिक शांति को भी स्वास्थ्य का एक आधार माना गया है, इसलिए तनाव को कम रखना चाहिए, और तनाव को कम रखने के लिए वे योग और प्राणायाम कर सकती हैं।
1: नीरज जी, आपने महिलाओं के बारे में तो बता दिया कि उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात आती है बच्चों और बुजुर्गों की, तो उन्हें लू से बचने के लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए?
0: बिल्कुल, बच्चों और बुजुर्गों में पानी की कमी जल्दी हो जाती है, थोड़ी लापरवाही होती है, बुजुर्ग कम पानी पीते हैं, बच्चे लापरवाह होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार तरल पदार्थ हमें जिम्मेदारी से देने चाहिए। खास उनको समझाना चाहिए कि दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच में ये घर से बाहर नहीं निकले, यानी उस समय हम धूप से इनको बचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और हल्के कपड़े पहनाएं उनको। यदि चक्कर, तेज बुखार या कमजोरी लगे उनको तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
1: तो क्या नीरज जी, योग और ये घरेलू उपाय शरीर को शीतल रखने में मदद करते हैं हमारी?
0: जी हाँ, निश्चित रूप से ये मदद करते हैं। शीतली प्राणायाम एक होता है, वो शरीर को एक तरह से शीतल करता है, इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम है। अनुलोम विलोम और ध्यान मन और शरीर को शांत रखते हैं, जो इन दिनों में बहुत ही फायदेमंद है। घरेलू उपाय में सौंफ का पानी हम पी सकते हैं, धनिया का पानी गुलकंद दूध के साथ लेना बहुत ही फायदेमंद रहता है। लेकिन यदि कोई गंभीर बीमारी हो तो घरेलू उपायों के साथ डॉक्टर की सलाह भी आवश्यक है, केवल हम घरेलू उपायों के भरोसे नहीं रहे।
1: जी निश्चित ही श्रोताओं को यह जानकारी बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। डॉक्टर साहब, यदि किसी को लू लग जाए या फिर अधिक कमजोरी महसूस हो तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए?
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही हम छायादार जगह पर या घर के अंदर ही ऐसा हुआ है तो खिड़कियां खोल दें, हवा आए, और ठंडी जगह पे हम उसको लेटा लें और उसको पर्याप्त पानी दें, ORS दें, और नींबू है अगर तो नींबू पानी देना चाहिए। तो नींबू में भी क्या है कि ORS की तरह ही कंटेंट बनते हैं, इसमें भी सोडियम पोटेशियम का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर भी मैनेज करेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी है उसको भी पूरा करेगा। शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए उस समय, यानी शरीर बहुत ही जल्दी हम जितना ठंडा कर सकें उतना फायदेमंद रहेगा। अगर उस व्यक्ति को तेज बुखार है, उल्टी हो रही है, बेहोशी या सांस लेने में परेशानी है तो ये गंभीर बात कहलाती है, उसको तुरंत ही उस समय हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और इसका हमें प्रबंध करना होगा, क्योंकि ये एक आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी कहलाती है ये।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी में छोटी छोटी सावधानियां बड़ा ही लाभ देती है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक छोटा सा

0: संदेश क्या होगा?
1: मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन होगा कि गर्मी को हल्के में नहीं लें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, योग और दिनचर्या अपनाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। केवल घरेलू हम उपाय करेंगे और ऐसी कोई इमरजेंसी आई और घर पे हम ऐसे उपाय करते रहेंगे तो ये गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति दोनों का एक ही उद्देश्य है पुष्पा जी, कि स्वस्थ जीवन। यदि हम थोड़ी सावधानी रखेंगे तो गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं।
0: तो बहनों, आज हमने जाना कि गर्मी के मौसम में सही खान पान, पर्याप्त पानी, घरेलू पेय और थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम अपने तन को शीतल और स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए डॉक्टर नीरज पंड्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीरज जी।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: और बहनों, अब चलते चलते आपको सुनाते हैं प्यारा सा नगमा जिसे हमने लिया सीता गीता फिल्म से।

आज के नारीमोक कार्यक्रम में जाने की यीशु शांति का संदेश और गर्मी के स्वास्थ्य की देखभाल के संग उपाय याद रखिए। बेटा घर में शांति, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और स्वस्थ जीवन, ये एक खुशहाल समाज की पहचान है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए पुष्पा सैनी को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा। नमस्कार बहनों।

अभी आप नैडीलोक कार्यक्रम सुन रहे थे एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी बांसवाड़ा का हिमाही चैनल है। 5:30 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

तरानी ने पुरानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज गीतकार योगेश की पुण्यतिथि है, तो उनको विविध भारती परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हुए कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उनके लिखे कुछ गाने। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके ही लिखे इस गाने के साथ कार्यक्रम को।

0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा
1: कहा
0: कहा
1: कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, चल रहा है तराने नए पुराने। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतकार योगेश के लिखे कुछ गाने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीतकार योगेश के लिखे कुछ गीत। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचार के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम

0: पट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केन्द्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए हमारा अगला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म शंघाई से।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 6:30 अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद को या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों जीवन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज

0: जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। एनआईए की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदण में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी, लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में सीएसआर कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी गति की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसले

0: को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावन राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावन दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावन प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूरदराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। ये पहल नीति आयोग फंड से एएनएम की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण, जल की सफाई, देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत मिशन तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहां यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान

0: जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, हूँ पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला, 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेज हाल ताई देश रा 40 लाख घरा रे छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना लगाई ची। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश हूं लू और तपन हूं थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताईचियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राख्योड़ा फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची री पीठ व्यक्तिगत आजादी जुड़िया मामला माए तुरंत फैसला री जरूरत माथे जोर दीनो। पीठ कहो कि जमानत री अर्जिया माथे हुकम वही दिन या आवता दिन सुनाया या अपलोड कर दिया जाना चाहिए। अदालत कहो कि जमानत या सजा निलंबन रो हुकम सुनावन रा तुरंत पाछे जेल रा अहलकारा ने जानकारी देवनो जरूरी है। पीठ कहो कि विचाराधीन कैदी ने जमानत मिलताई वही दिन या आवता दिन जेल नु छोड़ दियो जावनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामला माए दायर अर्जियां माथे आज ही सुनवाई कीनी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ कहो कि इन मामला माए चूक री जिम्मेदारी तय करी जावनी चाहिए। आ अर्जियां माए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उजू बनावन या वन हटावन रो हुकम देवन और वाणी ठोड़ एक मजबूत और स्वायत्त निकाय बनावन री मांग करी ची ही। इन मामला माए अगली सुनवाई जुलाई महीना रा दूजा सप्ताह माए करी जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू ओजू ली जावन वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीका बिना गलती करावन रो भरोसो दिरायो है। दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसो दिरायो के सरकार विचे इम्तिहान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगड़ा जतन कराया जा रहा है।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश माए हाल ताई 40 लाख मकाना री छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना लगाती रिची है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वे कहो कि आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला। प्रदेश में राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करियो जावणो है। इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करिया जा सकेला। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करी जिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून ने सवारे 9 सिंजा 4 बजे ताई वोट पड़ेला और वही दिन सिंजा 5 बजे वोटा री गिनती करी जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान

0: पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सा गए भी मीटिंग माए कंपनिया रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमिशनिंग रा काम शुरू कर दिया चावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पेंशन लेवन वाला ज्या लोगां रो हाल ताई सत्यापन नी करायो जा सक्यो है मारो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो जा वेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माए न्यारी न्यारी योजनावां रा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए ए हुकम दीना। वे कहो कि राज्य माए करीब 89 लाख लोगां ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जहां मायू 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA री टीमा आज अजमेर नीमराना हलका माए कुछ थोड़ा छापा मारिया। NIA री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली थोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी ची। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद था। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी चिया। जैसलमेर जिला री भुणियाणा पंचायत समिति में पीपल पूजन करी चियो और महिलावां मंगल गीता सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलकारा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे मारी भागीदारी बधावनु है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमने विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान रा तहत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रबारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन री शपथ दिरावन रा कार्यक्रम राखी चिया। मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हलका माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हलका माए तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। ई बीच जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी भेवन सागे बीकानेर माई कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बारा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन तेज आंधी अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी गति की जा सकती है। बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वहां वीडियो ने गलत बतायो है जिनमें इटली री प्रधान

मंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने एआई बनाई चियो है। पीआईबी री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावने वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माय संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इस दौरान सांसदा विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज माय हिंदी ने असरदार तरीका काम लेवन रबारा माय चर्चा करी जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह मिशन मौसम रातेत मौसम और कोहरारी निगरानी सारू देश री पहली एकीकृत विमानन प्रणाली स्काई कास्ट रो आज नई दिल्ली रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मथे उद्घाटन किन्नो। ई मौके वे कहियो के ई नुआ सिस्टम रो मकसद हवाई अड्डा मथे मौसम री निगरानी और कोहरा रो सटीक अनुमान लगावण ने और मजबूत बनावनु है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावन रो लक्ष्य नीचला लेवल मथे हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी माए पंचायती राज मंत्रालय कान्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र माए बोल रहा है। वे ग्राम लेवल मथे जनता ने मजबूत बनावण मथे जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माय लोगा ने जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो के गांवा माय हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माय साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माय खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट देश की सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेत हालताई देश रा 40 लाख घरां री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना लगाई जी। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हलका माए आंधी बारिश लू और तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर ठोणा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताई चियो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

FM एक सौ 1.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। शाम के 7 बजे हैं प्रस्तुत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

रोटावेटर है, कल्टी है, जी यंत्र है, इन अपने देखभाल करवी जरूरी है। काम अपन शुरू कर इन पहले अपन जी यंत्र है इन साफ सफाई करवी है, जो घूमने वाला जी चलने वाला जी हिस्सा है इन भी अपने जी बेल्ट है या चेन है इन समय समय ऊपर अपने ऑयल वगैरह ग्रीस ये करव जरूरी है। ट्रैक्टर या जो भारी मशीन है इन्हें गियर इंजन आयल समय समय पर अपने बदलव भी है। जो जंग वाला टूट फूट ही जो हिस्सा इन्हें अपन कहीं मिट्टी लगी जाए या खाद खाद लगी जाए कीटनाशक छिपकी जाए तो इन्हें अपन पानी तक ही धो जरूरी है। जी लोहा में यंत्र है जी हल है और कल्टीवेटर है इन ऊपर कहीं जंग लगी जाए तो इन्हें साफ करवा अपने जरूरी है। किसान भाई जी ऑफ सीजन में जो आप खेती में काम नहीं हुआ एवं समय में अपने जी कृषि यंत्र है जी ट्रैक्टर है कहीं ट्रॉली वगैरह है थ्रेसर है तो इन्हें धूप में या बारिश में अपने बसावीन रखो इन्हें छायादार स्थान ऊपर ठीक समतल स्थान ऊपर रखो है। जी मशीन है इन्हें जमीन थकी थोड़ो ऊपर जी लकड़ी या ईट थकी अपन जी सहारो आ ली थोड़ा ऊपर रखूंगा तो इस संतुलित अवस्था में रहेगा। ने टायर वाला हिस्सा है इन खराब नहीं था किसान भाई इसलिए थोड़ा ऊंसो रखो जरूरी है। आप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाला उपकरण है जी ट्रैक्टर है जी वाहन है तो इन्हें आ बैटरी साफ ने आ सूखा स्थान पर अपने मेन भी है जी इलेक्ट्रॉनिक वाला यंत्र है इन्होंने क्योंकि किसान भाई आ यंत्र अपने हर हमेशा काम में ले वही आप खेती में हमेशा उपयोगी ने फेरे अपन कहीं खराब थी गयु या नव लेवा जाए तो पसो आप खर्चो लगे એટલે આપણે પહેલાથી કિસાનની સાફ સફાઈ અને સુરક્ષિત સ્થાન પર રાખુંગા તો અચ્છું હૈ। કિસાન ભાઈ વાત તો ચાલી રહી પણ આપ યુવા કિસાન ભાઈ આ શુકલાલજી હિ એની વાત હોણ અને પછી આપણ આગળ વાત કરો।

चौपाल कार्यक्रम हमारा सब किसान भाइयों ने बहनों ने सौरा देखी मैंने बहनों राम राम राम राम किसान भाइयों सब भाई सौरा को राम भेज गया बहने भी बैठी थी कि किसान भाई आजकल गर्मी पड़ी हुई थकी है भाई क्योंकि आज गर्मी में आप लोग स्वास्थ्य में देखभाल देखते थे कि आज जो खेती बाड़ी में काम है ये अपने भाई करवो है क्योंकि स्वास्थ्य में भी अपने ध्यान रखो जरूरी है क्योंकि आप लोग स्वास्थ्य ठीक है तो अपन खेती बाड़ी में काम कर सके हैं क्योंकि केवत में के दूर भाई पहले सुख निरोगी काया એટલે આપણે હાજા હા તો આ ખેતીવાડીનું કામ સહી સમય ઉપર કરી શકા કિશનભાઈ દેખો આજે આપણે વાત કરું ખાસ કરીને કૃષિ યંત્રની દેખભાળની બરાબર વાત કર કિશનભાઈ દેખો જે કૃષિ યંત્ર જે ટ્રેક્ટર હૈ

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: राम राम, राम साहब, राम राम। आपने नाम सुखलाल खराड़ी क्या काम नाम फतेहपुरा फतेहपुरा पोस्ट कई बात है कुंडला
3: कुंडला
2: हाँ कई बार आई हाँ विद्यू
3: रतलाम रोड
2: बेसी बासवाड़ा
3: बासवाड़ा में
2: हाँ महिडेम नजदीक पड़े था महिडेम नजदीक पड़े
3: कितने दूर है
2: महिडेम 20 किलोमीटर इतना
3: अच्छा
2: हाँ
3: तो हमने पानी कितने का महिडेम
2: महिडेम में पानी है मुझे
3: होगा 10 मीटर
2: अच्छा
3: बारिश में टाइम मतलब बढ़िया पानी अभी जो है
2: बढ़िया पानी
3: कितने का जवाब होगा पास हाँ
2: जवाब है
3: नजदीक पड़े
2: नजदीक पड़े
3: अच्छा अच्छा तो होड़ा गेट बनी जाए ना मैडम
2: होड़ा गेट बहुत अच्छी बात है
3: सुखलाल जी आप प्रणाम करी
2: मैं करी है
3: आप
2: हाँ
3: कहा तक नहीं
2: बी ए तक करी है
3: अच्छा
2: हाँ
3: अगाड़ी कोई कोशिश करी की
2: कोशिश करी बी ए कंप्लीट कई जो करी आईटीआई जो
3: अच्छा आईटीआई करी
2: हाँ।
3: अच्छा तो आप अच्छी भाई सोच लगा रही हर तरह दिमाग में आई तुम्हारा आईटीआई करवा
2: आईटीआई

0: एकदम जो करा फोन करी आईटीआई के लिए।
1: अच्छा बहुत अच्छी बात है यार। कई आईटीआई करी?
0: आईटीआई मैकेनिकल नहीं करी।
1: अच्छा हाँ। तो आपने कोई जॉब करेगा?
0: हमें तो खेती करी रिया।
1: आईटीआई करी तो कोई नौकरी कोशिश नहीं करी?
0: कोशिश नहीं करी।
1: बहुत अच्छी बात है यार। खेती करी जाए
0: जो भी करी।
1: कितनी जमीन है तुम्हारी?
0: जमीन 5-6 बीघा है।
1: 5-6 बीघा?
0: हाँ।
1: सुविधा
0: पानी सुविधा कुआ है?
1: कुआ?
0: हाँ कुआ है।
1: तो मोटर वगैरह लगे भी होगा?
0: मोटर है, मोटर पे भी पानी पाई।
1: अच्छा
0: पहले बार वाटर में बज्जी है की वाटर को वे खराब थी, बाद में फिर मोटर लाई है।
1: हाँ भाई पहले तो लाइट में कमी होगा।
0: लाइट में समस्या कमी थी,
1: अब तो हाँ लाइट में सुविधा थेगी।
0: हाँ।
1: अब तो भाई देखो आप माही माता अभी आवेगी।
0: हाँ।
1: गेरो गेर गंगा आवेगी,
0: लीला
1: ने लहर थेगी।
0: हाँ।
1: सही बात है भाई। अब तो भाई अच्छे पहला तो बड़ी कष्टी हुई।
0: हाँ।
1: सही बात है सुखलाल जी, आप बहुत अच्छी बात करी। जाए तो खेती बाड़ी करी जा?
0: खेती बाड़ी करी रिया।
1: हमने खास करी ने हो काम करी जा तुम?
0: अरे खेती में तैयारी करी रिया है।
1: अच्छा
0: पई हपई करी रिया, दाने हड़े हटाई रिया, सफाई खेता ने हड्डा बाड़िया ने सफाई साली रही है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ
1: खेती सफाई करी जा?
0: खेती सफाई
1: बिल्कुल भाई, मानसून पहले खेतर नी सफाई करनी जरूरी
0: जरूरी।
1: केम के आ मानसून आवी जी ने अपन सफाई करवा जंगा तो एना थकी हुआ दूर गाँव में अपन पासा पसाड़ी पड़ी जाए।
0: हाँ सफाई खाए नहीं भाई, सफाई नहीं होगा कीटनाशक कई जानवर बढ़ जाते फसल को नुकसान पाए।
1: बिल्कुल भाई, जे खेतर में कहीं कूड़ो कसरो है, कई डंटल है
0: खेत। हाँ खेत में तैयारी करा, ट्रैक्टर द्वारा या हल द्वारा खेत में जुताई कराई, इसके बाद गोबर खाद डालना पड़े अंदर।
1: अच्छा खाओ देसी खातर ना पड़े?
0: देसी खातर।
1: एक्चुअली देसी खातर ना की बस जुताई?
0: हाँ
1: देसी खातर तो लगभग 1-1.5 साल पाकवा दे।
0: हाँ।
1: पाकवा दे
0: पाकवा दे, फिर इसके बाद खेत में पूरे डाल के फिर हल या ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर।
1: अच्छा मिट्टी मड़ा दे?
0: मिट्टी मड़ा दे।
1: बिल्कुल अच्छी बात है। पासु गोबर का नाकवा था कि पासु में
0: कई दीमक लगी
1: है,
0: बीमारी फसल नहीं नुकसान कर।
1: बिल्कुल भाई आज सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि अपन कहीं कासु गोबर नाखी दंगा तो फसल नुकसान करे।
0: हाँ
1: सही बात है शिवलाल जी, आप अच्छी बात करी थकता हूँ। खास करी ना खरीफ जी आप चौमासा वाली फसल आ रही है।
0: हाँ खरीफ
1: आगड़ में मोटा तौर पर ही फसल करेंगे
0: हमारे मक्का और कपास दो फसल पे।
1: का कपास है?
0: हाँ
1: करो पास है।
0: हाँ वही करा।
1: खाद बीज तो पहले था कि लावी में ना?
0: पहले था कि लावी में ला।
1: बिल्कुल भाई खाद बीज भी पहला था कि लाविन में है। अब बिल वगैरह भी लेता होगा खाद
0: बीज? बिल खाद वगैरह बीज भी लावा बड़ा में बिल हाथे हुए कि फसल खाए नहीं, मतलब कई नुकसान भी नहीं क्यों बिल हो तो फिर बिल ले जाके फिर बता सके।
1: सही बात है भाई, आप कोई नुकसान थो कोई नको नुकसान थो तो आप व्यापारी
0: फसल मक्का बढ़ी गई कहीं उगे नहीं तो फिर वो बिल बता सके।
1: सही बात है, अपन व्यापारी तो की बात भी करी सकते।
0: हाँ व्यापारी से बात करी सकते।
1: बिल्कुल भाई, तो आ कपास नी बुआई मक्की तो कपास हरते हो बुआई करो?
0: एक एक पाड़ो मक्की नो एक पाड़ो कपास।
1: अच्छा
0: मतलब थोड़ा दूर दूर डेढ़ फीट दूर दूर थोड़ा पाड़ा थी मतलब बुआई करा, फिर इसके बाद 17-18 दिन में वो फसल
1: उगी जाम की होती
0: है।
1: अच्छा
0: तो फिर उसको कई दवाई छिड़काव करना, कई गुड़ाई कई लिंदाई कई खर्ची लगाना,
1: लगभग 15-20 दाड़ पास निराई गुडाई करनी।
0: निराई गुडाई चालू?
1: अच्छा निराई गुडाई तो भाई जरूरी है क्योंकि फसल में
0: फसल की બળી નહીં શકાય, સારું તરફ ઘાસ હો જાય.
1: છે એ ભાઈ મુખ્ય ફસલ જે આપણે મેઇન ફસલ હે, એને અલાવા જે અનસન ખોડ ઉગી જાય એને કાઢવું જરૂરી છે. કેમ કે એ ખોડ નહીં કાઢંગા

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वाह भाई, किसान भाइयों देखो, सौरव पर विज्ञापन भी होंगे।

नहीं आपने वाते साले रीते खेती बाड़ी नहीं किसान भाई देखो मानसून पूर्व आपने जी तैयारी करवी है तो आपने जारी रखवी है केम के आ पानी तो आवेगा पण आपणो काम है ही आपण करतो रहेवू है खेतर में कई प्रकार नो कूड़ो कचरो है कहीं देशी खातर नाखवू है तो ये काम आपणे करवो है कहीं खेत नी मेड बनावी है या समतल करवो खेतर तो एवो काम कर वो आमने जरूरी ही निभाई जी कहीं बाग बगीचो लगाड़वा है तो आमने अपने गड्ढनी खुदाई करी दीवी क्योंकि आमने गड्ढा खुदी देंगा तो आना समय तोपे बढ़ेगा या मानसून आवत में अपने तैयार मड़ेगा तो मानसून आवत में अपने नी पौधे नी रोपाई कर देंगा टेम अनुसार ताकि अपना पौधा भी अच्छा वड़ी जेंगा आनंद हुआ कि जी पौधा वगैरह लगाड़े तो इन्हें अपने कोई लकड़ी में सहारो आलंगा ताकि कोई हवा थकी पेड़ ही ये पड़ी नहीं सके किसान भाई हुकीम के आने छोटी मोटी बातें अपने ध्यान में रखी ही नहीं जी नर्सरी थे कि पौधा भी अपने आमने थकी भाई चुनाव करी लिवो है कि भाई कई पौधे लगाड़वाए आमना लगाड़वाए या कटल है नींबू है या मौसम भी है इन पहले थकी अपने निर्णय कर ले पसे आप बाग बगीचा नो अपने चुनाव करवो है किसान भाई वाते साली रही पण हाजना समय है तो एक बढ़िया सुभजन होना पसे अपना गाड़ी बातें करो।

वाह भाई, किसान भाइयो, संजा वेड़ा बढ़िया सु भजन होने आनंद आवी जो भाई। आजकल सब भाई खेती बाड़ी नो काम काज भैया तैयारी करी गया था कहीं तो भाई एकदम मन एकदम शुद्ध थज्यू। किसान भाइयो, आजकल आपने खास करीने आप गर्मी मौसम आना पशुधन ने भी देखभाल कर भी जरूरी है, क्योंकि आप पशु अबूलो जीव है। इन्हें आने समय दाड़ा में तीन वक्त पानी अपने पावो जरूरी है, साफ पानी पावो, ठंडो पानी, ताकि इन्हें शरीर असली तंदुरुस्त बनी सके। नहीं भाई बासो आवारा पशु छोड़ी दे सूटू तो पूरो दाड़ो आपने तुम रखड़ तो उंडे। नहीं भाई कहीं नदी नाड़ा में गंदू पानी पिएगा तो इन थकी पशु है, पशु बीमार थी जाए। एटले किसान भाई अपने घीरे साफ पानी पाव पशु ने आना समय अपने नहलाबू है भी है। पशु ने कई प्रकार ने शरीर पर मिट्टी है, कहीं जूवी घेंगोड़ा वगैरह है तो ये भी खत्म थी जाए, ताकि स्वच्छ रहेगा। खान पान में भी अपने जरूर ध्यान रखो भाई, आना समय हारो सारा नो भी अपने काम लेवो है। कोई बाजरी वगैरह है तो इन्हें हाल भी जरूरी है, क्योंकि किसान भाई मैं दुधारू पशु हूँ तो इन्हों दूध की मात्रा अच्छी बनी थकी रहेगा।

फैट भी अच्छी आवेगा। नहीं जी कहीं गाभिन पशु है तो इनू भी अपने ध्यान रखो है भाई, समतल जमीन ऊपर बांधव है, कहीं ऊपर खाबड़ जमीन ऊपर बांध देगा तो पशु ने बेसारा तकलीफ थी सके, एटले इनी हाल हंबाड़ कर भी इन्हें जी पशु है एना थकी जी गाभिन पशु ने अलग बांधव है भाई, किम के कहीं पशु एक बीजा थकी लड़ाई करे दी तो इन्हें कहीं नुकसान थी सके, एटले आपने अलग बांध देगा तो ये अच्छू रहेगा ने सायाम बांधव है, किम के आजकल ताप बहुत तेज पड़ी रह थको है, क्योंकि इन्हें छाया मन ठंडी हवा में बांधेगा तो अच्छा रहेगा। किसान भाई वो दूध काटते वक्त भी अपने छोटी मोटी बातें ध्यान में रखी है, दूध काटी ने तुरंत इन्हें पशु ने बहवाने देव, क्योंकि तुरंत बही जाएगा तो इन्हें थन में कहीं मिट्टी है कोई कंकड़ है तो ये प्रवेश करेगी पासा थन में, एटले 5-10 मिनट बाद अपन बेहवा देंगे पशु ने तो अच्छू रहेगा, क्योंकि आ छोटी मोटी बातें अपने ध्यान में रखी, कंकड़ या कोई मिट्टी पशु इन ग्रहण कर ले तो इन्हें पशुआ थनेला रोग थवाने संभावना थी सके, एट्ले आ छोटी मोटी बातें अपने ध्यान में रखी। किसान भाई बातें चाली रही पण आ सोरा नो टाइम पासो पूरो थतो आयो है, आदत छूटा पड़ा ने काले नवी जानकारी लई ने सोरा पर फिरी मळंगा। आज नानू भाई ने आलो आज्ञा आवजू, राम राम राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोता चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:30 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: आए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय
1: हमारी जनगणना
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: खेती बाड़ी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगला काश्तकार भया ने और ढाणिया में और चूल्हा पर काम करती सगली बहनावा ने थाकी बहन मनस्वनी रो स्नेह भरो राम राम सा और प्रभु भाई सा थाने भी ओजू गणो गणो राम राम।
5: बिल्कुल मनस्वनी बहन थाने और सुनवा वाला सगला अपना ग्रामीण श्रोताओं ने जगह दूर दराज गाँव ढाणी रवाई ने कार्यक्रम सुने है और तित बंदिया सुने है सगला हेतालवा ने गणे मानसू प्रभु दयाल वर्मा की तरफ सु राम राम सा।
4: भाई साहब खेती बाड़ी कार्यक्रम यानी कि आपा बाता चीता करा हाँ आपने काश्तकार भैया करे भलाई के बारे में काश्तकार भैया री विकास रे बारे में तो आज का ही चर्चा लेर आया हो सा।
5: अब देखो बातचीत हमेशा आपा कोई न कोई

0: ઓછો કોસો લોક રચના સુણવા કે પાછે ભાઈસા અબ આપણે કાર્યક્રમને બઢાવવા જાણકારી દી ઓર તો આ જાણકારી દેવા કે ખાતર આપણે સાગે મોજૂદ હૈ ડોક્ટર અર્જુન સિંહ ચૌધરીજી એ આપણને જાણકારી દેવલા રસાયણ મુક્ત ખેતી મેં ટ્રેપ તકનીક ની ભૂમિકા કે બારે મેં તો ચાણા ઓર લેવા જાણકારી
1: બિલકુલ સર
2: રામ રામ પ્રિય કિસાન ભાઈઓ ઓર બહેનો મેં ડોક્ટર અર્જુનલાલ ચૌધરી અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર એન્ટોમોલોજી વિવેકાનંદ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી જયપુર આજ અબ બાત કરેલા રસાયણ મુક્ત ખેતી મેં ટ્રેપ તકનીક કી ભૂમિકા આજ કે સમય મેં ખેતી કી સબસે બડી ચુનૌતી હૈ કીટો કા બઢતા પ્રકોપ કીટ ફસલ કો નુકસાન પહોંચાતે હૈ ઉત્પાદન ઘટતા હૈ ઓર કિસાન કો બાર બાર મહેંગી વ જહેરીલી દવાઈઓ કા સહારા લેના પડતા હૈ इसलिए किसान भाइयों सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय आज बताने जा रहा हूं कीट नियंत्रण के ऐसे तरीके भी है जो सस्ते सुरक्षित और बिना जहर के भी है जो आज के समय में बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता है हम बात करेंगे ट्रैप तकनीक के बारे में विशेष रूप से येलो ट्रैप ब्लू ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप के बारे में ये ट्रैप तकनीक है ये तीनों तकनीक जैविक खेती और रसायन मुक्त खेती की रीढ़ है तो सबसे पहले बात करेंगे येलो ट्रैप यानी पीला चिपचिपा जाल क्या होता है कैसे काम करता है किसान भाइयों येलो ट्रैप एक पीले रंग की चिपचिपी सीट होती है कई छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े पीले रंग की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं सबसे ज्यादा सफेद मक्खी माहू एफिड जिसको अपन एफिड बोलते हैं लीफ होपर ये तीनों इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट सकिंग पेस्ट है जो किसान भाइयों इनको कंट्रोल करने के लिए येलो ट्रैप हम काम में ले रहे हैं तो इसको कैसे काम में लेना है क्या क्या करना है और ये कीट क्या है कि जो भी पीला रंग का आप देखते हो वस्त्र भी है पीला रंग का तो वो वस्त्र की तरफ भी आकर्षित होते हैं इसलिए येलो ट्रैप अपने काम में लेंगे सब्जियों जो सारी सब्जियों में ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपके सफेद मक्खी एफिड हर सब्जी में लगता है लीफ ऊपर फिर दालें आ गई तिलहन में भी फूलों की खेती में भी सब में ये हानि पहुंचाते हैं और इनको बिना दवाइयों के कोई भी प्रकार का अपन को जहर खेत में नहीं डालना है उसके लिए अपन को कैसे कैसे ट्रैप मार्केट में भी उपलब्ध है लेकिन मार्केट से अच्छा है कि किसान भाई घर पे भी अच्छा एक येलो ट्रैप बना सकते हैं मतलब आसानी से कोई उसमें ज्यादा वो नहीं है खर्चा नहीं है बिल्कुल आसान विधि है जो मैं बताने जा रहा हूं इसके लिए क्या करना मान लो घर पे भी आपको अगर कोई चीज जैसे मटका है यूज नहीं आ रहा है तो मटका का क्या करना है मटके पे जो ये येलो कलर है पीला कलर कर दो उसके ऊपर अब कलर करने के बाद में उसमें क्या करोगे जो ग्रीस होता है ना ग्रीस चारों तरफ उस पर लेप कर देते हैं ग्रीस का लेप कर देते हैं फिर लेप करने के बाद में उसको जो भी आपकी फसल है या सब्जी है या कपास है या तिल डाले तिलहन फूलों की खेती है उससे आपकी जो फसल है उससे 1 से 2 फीट ऊंचाई पर उसको लगा दो लगाने के बाद में आप ऑटोमेटिक ये निगरानी करोगे आप फिर आप देखोगे भाई मॉर्निंग में लगाया फिर शाम तक देख के आओगे तो आपको एहसास होगा भाई इतने सारे ये कीट कहां से मतलब इसमें आके चिपक जाते हैं और उनका आसानी से कंट्रोल हो जाता है तो लगाने की विधि क्या है भाई 10 से 12 ट्रैप प्रति एकड़ एक एकड़ में आपको कितना लगाना है 10 से 12 ट्रैप लगाने हैं फसल की ऊंचाई से भाई जो आपकी फसल है 2 फीट की है तो 2 फीट से भी ऊपर 1 या 2 फीट ऊपर मतलब फसल की जो ऊंचाई है उससे थोड़ा ऊपर लगाना है उसको मतलब 1 से 2 फीट ऊपर और 15 से 20 दिन में ट्रैप बदले तो ये 15 से 20 दिन में ट्रैप आपको बदलना है मतलब चेंज करना है क्यों करना है क्योंकि वो आपने मान लो ग्रीस का लेप करके आपने मटका लगा दिया तो उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाएंगे वो मतलब जितने कीड़े हैं वो सारे बहुत सारे चिपक जाएंगे फिर उसको क्या चिपकने की थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है तो उसको वापस आप एक बार उसको उतार के नया ग्रीस लगा दो मतलब उसको नया लेप कर दो पूरा फिर वापस ये चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे इसके लाभ क्या है अब लाभ की बात करें किसान भाइयों देखो लाभ सबसे सस्ता और सरल उपाय है मतलब इसमें कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं छिड़कनी है कुछ भी नहीं करना है बस आप कोई भी मटका या पीपा जो घर पे मतलब यूजफुल नहीं आ रहा है उसमें आराम से बस पीला कलर करके आप खेत में आसानी से उसको सेटअप कर सकते हो उसमें ज्यादा नहीं है छोटा लकड़ी का कोई भी लकड़ी का डंडा लिया है ना और उसको खेत में गाड़ के और खेत के ऊपर वहां लगा दो छोटे छोटे तो आप कोई भी प्रकार का जहर यूज नहीं कर रहे हो।

इसमें जो आपके मित्र कीट है ना, अब आप क्या करते हो भाई, अपने दवाई का स्प्रे करते हैं, मान लो किसान भाई हो तो दवाई उसमें ये थोड़ी पता चलता है भाई ये मित्र कीट है, ये अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीजें सुरक्षित है, मतलब मित्र कीट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कीट की शुरुआती जानकारी मिल जाती है, जो कीट आपको शुरुआती जानकारी मतलब है कि कीट आना स्टार्ट हो गया, तो वो जैसे ही आपको येलो ट्रैप की तरफ आकर्षित होगी वो उस पर चिपक जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई एफिड आ रहा है या सफेद मक्खी आ रही है या फिर लीफ ऊपर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पेस्ट है, तो आपको आसानी से आप पता लगा सकते हो भाई आने लग गए कीट और अपना इलाज भी होने लग गया है। फिर है ब्लू ट्रैप, मतलब येलो ट्रैप, तो ये तीन इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद में नीला चिपचिपा जाल, तो नीला ब्लू ट्रैप जिसको ब्लू बोलते हैं, ब्लू ट्रैप मुख्य रूप से थ्रिप्स के लिए, जो थ्रिप्स है वो भी एक हानिकारक इंसेक्ट है जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, के लिए उपयोगी है। थ्रिप्स छोटा कीट है, बहुत छोटा कीट, तो ब्लू ट्रैप से कौन सा कीट नियंत्रण होता है, ओनली थ्रिप्स होता है, उपयोगी फसल है थ्रिप्स। देखो प्याज में अधिक नुकसान पहुंचाता है, मिर्ची में, फूलों की खेती में, और जो ग्रीन हाउस फसलें इसको भी लगाने की क्या विधि है, वही 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़, एक एकड़ में आप 10 से 15 ट्रैप लगा दो ब्लू कलर के, खेत में समान दूरी पर लगाएं। अब इसके लाभ क्या है, लाभ थ्रिप्स नियंत्रण में सबसे प्रभावी उपयोग, मतलब दवा छिड़काव की आवश्यकता कम है, जैविक खेती के लिए सबसे उपयोग, जो जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती के लिए थ्रिप्स का जो आप कंट्रोल कर रहे हो वो सबसे अच्छा उपाय है। उसके बाद में एक आपका फिरोमोन ट्रैप यानी गंध पास। अब फिरोमोन क्या होता है, फिरोमोन को कैसे यूज करते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा मतलब प्रभावी है। अब फिरोमोन ट्रैप क्या है, फिरोमोन ट्रैप एक ऐसा उपकरण है जिसमें मादा कीट की गंध यानी फिरोमोन को कृत्रिम रूप से बनाकर ल्यूर के रूप में लगाया जाता है। जो फिरोमोन ट्रैप क्या होता है कि जो मादा कीट होता है उसकी गंध होती है फिरोमोन, उसको कृत्रिम रूप से बनाकर ल्यूर के रूप में बनाते हैं, जिससे क्या होता है नर कीट होता है उस गंध से आकर्षित होकर ट्रैप में फंस जाता है और मर जाता है। मतलब जो नर कीट है उसको क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा, मतलब उसको अपने पास बुलाने का काम करेगा। तो मादा कीट प्रजनन के समय फिरोमोन गंध छोड़ती है, उसी गंध को कृत्रिम रूप से वैज्ञानिक तैयार करते हैं और उसको एक ल्यूर बनाते हैं, तो वो खेतों में लगाने से क्या होता है कि जो नर कीट है, नर कीट उस गंध की ओर आकर्षित होती है और ट्रैप में पसने से प्रजनन रुक जाता है। अब वो आकर्षित होगा और जो ट्रैप है उसमें वो पस जाते हैं। एक नर कीट 4 से 5 मादा से प्रजनन करता है, एक मादा लगभग 200 से 300 अंडे देती है, यानी एक नर कीट पकड़ने से क्या मतलब है आपको किसान भाई, एक नर कीट अगर आप फिरोमोन से पकड़ रहे हो इसका मतलब है हजारों कीट पैदा होने से रुक जाते हैं। फिरोमोन ट्रैप की संरचना मतलब कैसा होता है वो देखो, उसमें ल्यूर होता है विशिष्ट कीट के लिए विशिष्ट गंध, और फनल या कंटेनर होता है कीट को पसाने के लिए यंत्र होता है, और ढक्कन होता है, मतलब ढक्कन है बारिश और धूप से सुरक्षित। अगर मान लो बारिश आ गई तो वो ऊपर का ढक्कन होता है उससे क्या होता है पानी अंदर नहीं जाता है। बैंगन का फल व तना छेदक, कपास की गुलाबी सुंडी, टमाटर का लीफ माइनर फल मक्खी, गन्ना के कीट, गोभी का डायमंड बैक मॉथ, जो भी अपने ककड़ी खरबूज तरबूज ये फसलें लगाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है फल मक्खी का होता है, तो फल मक्खी के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा उपाय है वो फिरोमोन ट्रैप बहुत अच्छा इसका उपाय है। फिरोमोन ट्रैप अब इसको लगाना कैसा है, वही 10 से 12 ट्रैप आपको प्रति एकड़, आपकी जो एक एकड़ में 10 से 12 आपको ट्रैप लगाने हैं, फसल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट ऊंचाई पर लगाना है, और ल्यूर को 30 से 45 दिन में बदल दें, मतलब वो पुराने ल्यूर जमीन में गाड़ दे। अब पुराना ल्यूर है उसको मतलब ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप इसे बाहर उसको छोड़ दोगे तो जो थोड़ी बहुत भी इसमें गंध बची होगी फिर वो सारे इंसेक्ट उधर आके उसके आकर्षण मतलब उसके आसपास मंडराते रहेंगे। अब इसकी जगह लागत क्या है भाई लगाने की, आप सोचते हो वो बहुत महंगा सौदा है, ये है कुछ भी महंगा नहीं है। लागत ट्रैप में 25 से 70 रुपए के लगभग, मतलब 25 रुपए से स्टार्ट होते हैं, 70 रुपए तक अच्छे अच्छे ट्रैप मिल जाते हैं, और जो उसकी लूर जो चेंज करने का लूर आता है वो 30 से 50 रुपए का मात्र इतना ही आता है, एक लूर 30 रुपए से लेके 40 रुपए या 35-50 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। अब फिरोमोन ट्रैप के लाभ, अब इससे भाई आपको क्या लाभ मिल रहे हैं, थ्रिप्स नियंत्रण में सबसे प्रभावी, जो थ्रिप्स होता है उसके नियंत्रण में सबसे अच्छा प्रभावी है, दवा छिड़काव की आवश्यकता कम है और जैविक खेती के लिए उपयुक्त है, साइन मुफ्त है, कोई प्रकार को आपको केमिकल मतलब किसी प्रकार की दवाई पेस्टिसाइड कुछ भी छिड़कना नहीं है, पर्यावरण के लिए अनुकूल, पर्यावरण बिल्कुल सेफ रहेगा, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, मित्र कीट सुरक्षित है, इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो मित्र कीट सबसे ज्यादा सुरक्षित है, किसान व मजदूर के लिए भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है, लंबे समय में लागत कम, अगर आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हो तो इसकी लागत बहुत कम आएगी। अब आवश्यक सावधानी क्या क्या बरतनी है आपको, अगर आप फिरोमोन ट्रैप लगा रहे हो
तो उसके लिए आवश्यक सावधानियां क्या है, ल्यूर समय पर बदले। देखो पहला बात है कि जो ल्यूर अगर पुराना हो गया मतलब फिर उसकी गंध थोड़ा कम हो जाती है तो फिर वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। पुराने ल्यूर को सही तरीके से नष्ट करें, यह भी एक

0: इम्पोर्टेंट बात है, जो अगर फिर आप अब चेंज कर रहे हो उसका लूर, मतलब दूसरा बदलना चाह रहे हो, तो जो पुराना लूर है आपको उसको या तो जमीन में गाड़ो, उसको सही से चेंज करना है। उपयोग से पहले सही कीट की पहचान करे, ट्रैप की नियमित जांच करे, उसकी टाइम टाइम से जांच भी करनी चाहिए भाई, उसमें इंसेक्ट भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने ऐसे खेत में लगा दिए और उसमें किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट आकर्षित नहीं हो रहा है तो उसकी जांच करनी चाहिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप कैसे आपकी फसल को कीटों से सुरक्षित रखते हैं। कम दवा, कम खर्च, अधिक उत्पादन, यही है आज की स्मार्ट और टिकाऊ खेती। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय किसान।
1: रसायन मुक्त खेती में ट्रैप तकनीक की भूमिका, इस विषय पर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी चौधरी अपन बहुत ही चौखी जानकारी दी। तो मनुष्य मैं आप क्यों ने धन्यवाद देवता थका एक मिट्टी सी लोक रचना पूर्ति कर दे।
2: हाँ सुनाओ सर।

0: तेरी शरण में आया मुझको क्या फिक्र है, तुझको फिक्र दुनिया का तू लेता सबकी खबर है। बिल्कुल मिट्टी सी लोक रचना भाई लोगों तक पूगती हुई। पण देखो मन सुन बहन, अब घड़ी इशारो करण लाग रही का आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम को टेम अठाई पूरा होने लाग रहे है। तो आज के कार्यक्रम से तो भाई लोगों थे थांगा भाई प्रभु दयाल वर्मा
1: और मनस्वनी सैन ने दियो विदा, चाला और करा राम राम सा।
2: खेती बाड़ी।

अभी आप सुन रहे थे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कटी पतंग फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज किशोर कुमार की आवाज़।

आनंद बख्शी की रचना, आडी बर्मन के संगीत में आपने सुना कटिपतन से ये गाना। मस्तानी शाम कुछ और भी बातें कहती है, क्या सुनते हैं अगले गीत में, जिसमें संगीत है सचिन देव बर्मन का, आनंद बख्शी की ही रचना, आराधना फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

आराधना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। जिंदगी में किसी के होने का एहसास ही काफी है जिंदगी जीने के लिए, पल पल दिल के पास। जी हाँ, ये गाना आपको सुनवा रहे हैं बुलेट ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण की बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

आरडी बर्मन के संगीत में मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना यादों की बारात सुनकर ये गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में।

मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, आरडी बर्मन का संगीत इस गीत में आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत चलते चलते फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है और आपको बता दें अमित खन्ना का लिखा गीत है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत। लता मंगेशकर का साथ दिया शैलेंद्र सिंह ने।

की आवाजों में और इस गीत के साथ इस कार्यक्रम से हम भी चलते हैं, क्योंकि आपसे रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत में कुछ चुनिंदा गीतों के साथ हम हाजिर होंगे। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, आप सुनेंगे 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार, 9:30 पर करंट अफेयर्स। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान बनाया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला T20 क्रिकेट में हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और हॉकी अंडर 18 एशिया कप में कप्तान केतन की हैट्रिक, भारत ने कजाकिस्तान को हराया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई अंडर 20 से, जहां एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हांगकांग में पूजा सिंह ने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में के ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने इस जीत के साथ नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। 19 वर्षीय पूजा ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.93 मीटर की कूद लगाकर सहाना कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं इससे पहले निपम ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण को यादगार बनाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण, वहीं साधना रवि ने महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में रजत पदक जीता।
1: पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता ने पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि चीनी ताइपे के शेंग किन लो दूसरे और जापान के चिहिरो ओबाता तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बधाई देते हुए कहा है कि नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में शानदार स्वर्ण के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 18 साल के नितिन ने शनिवार को भी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

0: प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 साल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक और दो बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके संदीप कुमार को रोमांचक मुकाबले में हराया था। वहीं महिलाओं के ट्रिपल जंप इवेंट में साधना ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया। चीन की यिंकिंग जी ने स्वर्ण जबकि कजाखिस्तान की मारिया शिचपाचेवा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2024 में दुबई में हुए एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में भारत 7 स्वर्ण सहित 29 पदकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैम।
1: वहीं अभी ताजा जानकारी हमें मिली है, महिला डिस्कस थ्रो में अमनंत कंबोज ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं पुरुष डेक्थलॉन में राहुल ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है और नितिन ने हाल ही में हुए नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस वॉक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। प्रतियोगिता में उन्होंने भारत के 40 वर्षीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर और दो बार के ओलंपियन संदीप कुमार को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यू चंडीगढ़ की ओर, जहां पर आईपीएल के क्वालिफायर 2 का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। यशस्वी जायसवाल इस मैच में 1 रन पर आउट हुए। ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर कगिसो रवाडा का शिकार बने। वहीं रविंद्र जडेजा 34 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। रियान पराग कप्तान राजस्थान के, उन्होंने 6 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के लगाकर 11 रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी 26 गेंद पर 47 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। अब बात महिला क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को पहले महिला क्रिकेट में आगे है। आइए सुनते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
2: भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। कप्तान स्मृति मंधाना पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई। इसके बाद शेफाली वर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर लॉरेन बेल का शिकार बनी। यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्वेज ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। भाटिया ने 54 रन और जेमिमा ने ताबड़तोड़ 69 रन की पारी खेली। इसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 13 गेंद पर 22 रनों का अहम योगदान दिया। भारत ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर 188 रन बनाए। बेल ने 18 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लगा। सोफिया 16 रन बनाकर क्रांति गौड़ का शिकार बनी। क्रांति ने एलिस कैप्सी के रूप में भारत को दूसरी सफलता दिलाई। 2 विकेट जल्दी खोने के बाद हीदर नाइट और एमी जोन्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला। अंग्रेज टीम को 101 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। एमी ने 67 रन और नाइट ने 21 रन बनाए। एमी के आउट होते ही इंग्लैंड की पारी बिखर गई और पूरी टीम 150 रन पर सिमट गई। नंदनी शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट, क्रांति ने 2, श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो विश्व कप से पहले भारतीय टीम अपना टीम कॉम्बिनेशन को सही करना चाहेगी और पहले मुकाबले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन कर अच्छा खेल भी दिखाया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस में उलटफेर का दौर जारी है। पुरुष सिंगल्स में राफेल खोलिंगन ने बेन शेल्टन को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं यानिक सिनर भी जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से हारकर बाहर हो गए। आइए जानते हैं खिलाड़ियों के रोमांचक प्रदर्शन के बारे में।
3: राफेल कोलिग्नन ने बेन शेल्टन को सीधे सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। कोलिग्नन की इस जीत के साथ टॉप हाफ ड्रॉ में अब सिर्फ 1 टॉप 8 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ही शेष है। 2 घंटे 3 मिनट की इस जीत में कोलिग्नन ने 49 में से 43 फर्स्ट सर्व प्वाइंट हासिल किए और उन्हें ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया के 62वें नंबर के खिलाड़ी राफेल कोलिग्नन पिछले 13 सालों से पहले ऐसे बेल्जियन खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने किसी बड़े टूर्नामेंट में टॉप 5 सीड खिलाड़ी को हराया है। इससे पहले ये कारनामा

0: 13 साल पहले कोच डॉर्सिस ने विंबलडन में राफेल नडाल को हराकर किया था। पिछले साल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविस कप मुकाबले में भी राफेल कोलिंगटन ने बड़ा उलटफेर किया था, जब उन्होंने एलेक्स डी मिनोर को हरा दिया था। ये उनकी दूसरी बार किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ जीत थी। कोलिंगटन का अगला मुकाबला इटली के माटेओ अर्नाल्डी से होगा, जिन्होंने 2021 में फाइनल में पहुंचने वाले स्टेफानोस सित्सिपास को 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 से हराया। दूसरे मुकाबलों में ऑगर अलियासिमे ने अर्जेंटीना के रोमन एंड्रेस बुरुचागा को 4-6, 6-0, 7-5, 6-1 से हराया और कोबोली ने वू यिबिंग को 6-4, 6-4, 6-4 से मात दी। 2021 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले माटेओ बेरेटिनी ने 22वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आर्थर रिंडरक्नेच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका के खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा ने फ्रांस के लुका वैन एश को 6-7, 6-4, 5-7, 6-1, 6-3 से हराते हुए अगले दौर में जगह बनाई। मैनुअल सेरेंडोलो से यानिक सिनर को 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। फरवरी से सिनर ने लगातार 30 मैचों में जीत दर्ज की थी और उन्हें इस प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलाड़ियों में प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: भारतीय टेनिस प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली भारतीय मुकाबलों पर होंगी, जहां एन बालाजी और यूकी भामरी पुरुष डबल्स में अपने अपने मुकाबले खेलते नजर आएंगे। वहीं स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का भी मुकाबला जारी है। सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर आज भारतीय खिलाड़ियों का दिन मिला जुला रहा। कुछ खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश किया तो कुछ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के कांग खेशिंग और आरोन ताई को 19-21, 21-17, 21-13 से हराया। सेमीफाइनल में कल भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण कोरिया के एसजेसीओ और डब्ल्यूएच किम से होगा। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की विश्व नंबर 4 जोड़ी चेन तांग जी और तोह ई वेई से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तो ई वेई के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन फैंस को अनुभवी पीवी सिंधु और शानदार फॉर्म में चल रहे लक्ष्य से भी उम्मीदें थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब रुख कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया। कप्तान केतन कुशवाहा की हैट्रिक की मदद से भारतीय टीम ने पहले पूल ए के मुकाबले में कल कजाकिस्तान को 13-0 से मात दी।
2: कप्तान केतन कुशवाहा ने 3 गोल करके भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, जबकि प्रहलाद राजभर, आशीष तानीपूर्ति, अंश बहुता और शाहरुख अली ने 2-2 गोल किए। भारत ने मैच की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा। दूसरी ओर कजाकिस्तान की टीम लगातार दबाव में नजर आई। भारत के लिए शाहरुख अली ने 12वें मिनट में सर्कल के अंदर से बेहतरीन गोल किया। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद प्रहलाद राजभर ने एक और गोल करके भारत के बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले क्वार्टर के खत्म होने तक भारतीय टीम ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी गोल होते रहे। कैप्टन कुशवाहा ने 18वें मिनट में गोल किया, जबकि गाजी खान ने 20वें मिनट में चौथा गोल करके बढ़त में इजाफा किया। शाहरुख ने शानदार फिनिश के साथ अपने 2 गोल पूरे किए और पूर्ति ने 30वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। इसे भारत ने हाफ टाइम तक 6-0 की बड़ी बढ़त बना ली थी। तीसरे क्वार्टर में भारत के 5 में से 4 गोल पेनाल्टी कॉर्नर से आए। बहुता और पूर्ति ने 2 गोल किए। क्वार्टर के आखिरी मिनट में कुशवाहा ने एक पेनाल्टी कॉर्नर सहित 2 गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने तीसरा क्वार्टर 11-0 की बढ़त के साथ खत्म किया। भारतीय टीम ने आखिरी क्वार्टर में भी दबाव बनाए रखा और शानदार जीत दर्ज की। आकाशदीप ने 51वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। भारत का अगला मैच 31 मई को मेजबान जापान से होगा, जहां टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप बधाई दी है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में पहलवानों के शानदार

0: प्रदर्शन और उनके खेल कौशल की सराहना की। श्री मोदी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। श्री रिजिजू ने भारतीय कुश्ती टीम की शानदार सफलता पर खुशी जताते हुए इसे देश के खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रतियोगिता के पुरुषों की फ्री स्टाइल और महिलाओं की कुश्ती टीमों ने टीम में खिताब जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 9 पदक हासिल किए जिनमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया उस युवा शतरंज सितारे के बारे में बात करने की जिन्होंने अपनी सोच, साहस और अद्भुत शतरंज खेल से पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। डी गुकेश आज ही के दिन जन्मे। तमिलनाडु की धरती से निकलकर विश्व मंच तक पहुंचने वाले गुकेश ने यह साबित कर दिया कि अपने सपने उम्र नहीं हौसलों से पूरे होते हैं। उन्होंने कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया और फिर अपने शानदार खेल, शांत स्वभाव और अद्भुत रणनीति से दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को मात दी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने भारत का तिरंगा गर्व से ऊंचा लहराया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। आज उनके जन्मदिन पर हम यही कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयां छुएं, नए कीर्तिमान स्थापित करें और देश का नाम रोशन करते रहें। स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्वालिफायर 2 के मुकाबले की ओर, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 5 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 49 रन बनाकर टीम को अकेले अपने दम पर संभाल रहे हैं। वहीं जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और कगिसो रबाडा ने भी 1 विकेट लिया है। जशन होल्डर 2 विकेट लेकर 11 रन दिया है उन्होंने 3 ओवर में। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वे

0: बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। एनएबीएल प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन हो गया। डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 270,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों को कानून के अनुसार प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो हुई जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया, हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को स्वीकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को

0: सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा के स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की संस्थान या तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं

के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता

0: न्यूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता अब्दुल्ला गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्ते।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुनिए हमजोली फिल्म का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में मजबूर फिल्म का गाना। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर है आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफी मेहनत और काफी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहां पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफर थिएटर और टेलीविजन और सिनेमा का शुरू हुआ।
2: मोहब्बत के दुश्मन।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहां पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं है। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये न लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर न रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के जमाने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूंकि 40s की थी तो उस जमाने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीजें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़े मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी

0: कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं। और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूंगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं। और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही। और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीजें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत जरूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे और मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें-6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहां हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे। और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था, और जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद है।
0: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, तबलो अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म मौसम।

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये मही चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब पेश नजर है फिल्म संगीत।

जब भी अंधेरी रात होती है दीवारों से अक्सर बात होती है। सन्नाटा पूछता है हमारा हाल हमसे और बस तेरे नाम से ही शुरुआत होती है। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अमानत फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत रवि का है। ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो बस तू मेरे करीब हो।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में अमानत फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में वापस फिल्म से। होठों पर नाम है तेरा, दिल में याद तेरी है। होठों पर नाम है तेरा, दिल में याद तेरी है। जमाने से हमें क्या लेना जब तुझमें बसी जान मेरी है।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में वापस फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धन पर मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी तुम्हारे ख्वाब आते हैं, कभी तुम्हारी याद आती है तो कभी तुम्हारे ख्वाब आते हैं, मुझे सताने के तुम्हें तरीके तो बेहिसाब आते हैं।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं गीत फिल्म का ये दो गाना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन कल्याण जी आनंद जी की है। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्वाबों की दुनिया, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्वाबों की दुनिया, बस तुमसे शुरू और तुम पर ही खत्म।

अभी आपने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में गीत फिल्म का गीत सुना, हसीना मान जाएगी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। अख्तर रोमानी के बोल की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। दूरियों से ही एहसास होता है कि नजदीकियां कितनी खास होती है।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। और अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में जानी दुश्मन फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम।

जानी दुश्मन इस फिल्म का गीत तभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में कामचोर फिल्म का गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। मेरी जान मेरी वफा हो तुम, मेरी जान मेरी वफा हो तुम, उस कुदरत का दिया हुआ एक नायाब तोहफा हो तुम।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में कामचोर फिल्म का गीत सुना। अब सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत, आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज में, घर फिल्म से। न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, न चांद की चाहत न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तो मिले मेरी तो बस यही ख्वाहिश।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में घर फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत, गीत संगीत रविंद्र जैन का है। मेरी प्यार भरी गुजारिश का एहसास तो कर लो, मेरी प्यार भरी गुजारिश का एहसास तो कर लो, मैं सिर्फ तेरी बनकर रहूंगी इतना विश्वास तो कर लो।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं नक्श लालपुरी का लिखा गीत खयाम के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म से। अब क्या कहें मेरे दिल के बहुत पास हो तुम, मेरे प्यार का एक खूबसूरत एहसास हो तुम।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में खानदान फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में दर्द फिल्म का नगमा। नगमा निगार है लक्ष्मीपुरी और मौसीकी खयाम की है। इन सोने सोने पलकों का आराम भी तू, मेरी सुबह भी तू और मेरी शाम भी तू।

अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में दर्द फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश प्यासा सावन फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है। काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए, काश तुम पूछो मुझे क्या चाहिए, मैं पकड़ू हाथ आपका और कहूं तेरा साथ चाहिए।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में प्यासा सावन फिल्म का गीत सुना। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों पे सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर रहे पर अपने तो अपने ही होते हैं। इसी के साथ फिल्म संगीत में ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी पांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिन्दी में समाचार हमारे दिल्ली केन्द्र से।

0: समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।